भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बेख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

सतगुर दिया बुझाए अड़सठ तीर्थ तिस संग रहै जिन हर हृदय रहया समाए नानक सतगुर मिलया।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञानं कल्याण निधनं हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

चलमान मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

ता अंद्रहु तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सारनाता अंद्रहु तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सारनाता वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता।

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीता नानका बहुते खटिया है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा।

सुख होई गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम राख जगत सगल देहथा राम सम्राथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता

सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पंच पदे अपना कर्म उस राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रख।

रहाओ जिन हर ते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदाता निखोट न कभी जाई।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन

गुर पूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवां। भूखे खावत लाज न आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाई है जित सिमरन दरगाह मुख।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याय दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरों सिमर सिमर सुख पावाओ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग

का जुग मह धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की मान जो जो होग रहाऊ।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा, संत

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच, पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोकन

विखम थान हुंजिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ विसरत सुख कदे नाहे जस है जन्म हार। सलोक।

गए। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग। साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। श्लोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उदमहि।

आनंद है, सर्व दोख निवारण है, शरण सूर भगवान है। जपंत नानक हर हर हरे,

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत को ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन। सज्जन मिले ना विछड़ है, जे आन दिन मिले रहन।

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुरपू।

भारत्य आवहो सोण हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पाओ भागा अंदर हो दुरमत दूजी खोई सोजन हर लिव लाग।

जात। गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभु पाए, मिलया सहज सुभाए।

वो शब्द रव रहया सो प्रभु मेरा स्वामी राम, प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाई।

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुर न पाइए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

नाम अखोट निदान है गुरमुखमन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

जपौ अपने हर भाली, सद बैरागनु हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, आकाश कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करणी क्या कार कमाए, हो मैं मेट चले गुर शब्द समाए।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिन की कहन गत कही न जाई सच्चै आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनों

ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਲਿਵ ਧਾਤ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪੇ ਜਾਪੇ ਆਪੇ ਸਤ

ले जो हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई एक परम भवै अवे महाना। बिलावल महला तीजा।

कह मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावह मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

मेरे भाई मिल हर हर कथा करहो, हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरहो, मेरे मन हर गुण

पक देख पतंगा सगल श्रृंगार करे नहीं पावे, जहां होए कृपाल तां गुरु मिलावे। हौ फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संता संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

संत संग समारो सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

भांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद, विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद। नानक तिन संत

रहाउ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका बड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

हे दृष्ट दृष्टाय अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अभिमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुली।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम

हर हर उस्तत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अत निर्मल।

शब्द अमृत है, सब तृष्णा भूख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ, सच वसिया मन आए, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सच्चो दहद स्पष्ट।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म

खिन मह वेश करहे नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मो माया कै मगन भया करहे विकार विथार कन्हेरे।

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वडियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजाए।

आई। पूजा करै सब लोक संतहो, मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतहो, ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवला।